मापल मिनी तरह तहन जगनी कैखुमने जरीब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लेंगा की सही कुनमंगा मपुंग फारपगे खनब थौरम पुंग मापल मिनट निफू मंगा संदोक जगनी गायखो ताकिसी अंगांगी थौरम ताब फंगबिगनी पुंग तरह मिनट तरह मंगा ngasi थौरम द फंगबिगनी मोयरांगथेम सिंखै गानबिगी खुनुंगिसै मोयरांगथेम लुनिका नसकपा मैतेइसै नेना तारे राजकुमारी की मतमिसै गुरुमयुम विद्यानंद शर्मा की वारी वारी लिबिगेद बिना कैसाम रानी पुंग तरह मिनट निफू मंगा मणिपुरी फिल्म इसेंग अमुन संदोक जगनी आयु पुंग तरह माथोय भारत की कई खुमन जरिब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जाति दीब पुंग मन की बात की साम कुंथ्रा निपान सूब टाक तहन जगनी मसी की हेक मतुंग मणिपुरी वाहनथोक ताब फंगबिगनी मणिपुरी वाहनथोक निदांग पुंग निपाल ताब संदोक जगनी पुंग तरह निथोय मिनट तरह संदोक जगनी रेडियो लीला ब्रिंदा देवी तुलसी देवी लीला इबी खोमद्रांग प्रमिला देवी पुथोपद तेंमांग अथोपम सुभाष चंद्र सिंह लीला पुथोप माइवम ईसा कांता नुपी की थौरम संदोक जगनी नुथिल पुंग मिनट तरह थौरम ताब फंगबिगनी लिसिंग अनि कुन तरुक नेशनल टीचर्स एवार्ड पुख्रम्ब लीलावती के उन्नदन वारी उतई सानब की थौरम उन्नबीगदबी अयेपम प्रियोबला थौरम पुथोपी थोकचोम रेनुबला नुथिल पुंग मिनट निफु संदोक जगनी वेस्टर्न म्यूजिक सकनायरब सिंगी वारी तहन जगनी नुथिल पुंग मिनट तरह थौरम लांथोपीगदबी सोनिया नुथिल पुंग मखाई संदोक जगनी फौज की थौरम चिंगलोल की सेरोल संदोक जगनी नुथिल पुंग अहम अहनबद फंगबीगनी ती चिंजा कुफ कांगबुन सक जौ लाइसोलीसै अरोबद थमजरी के पोलमीन थांग कांगबुन सक आइमो लाइसोलीसै पुंग अहम मखाई वी ले रोज कांगबुन सक लाइसोलीसै तहन जगनी मांगनुन मवी टोम्बिंग कांगबुदगी पाइटे लाइसोलीसै संदोक जगनी नुथिल पुंग अहम मखाई अहम मिनट यांखै पुंग मरी मिनट तरह लमखोलिंग कांगबुन सक थादौ लाइसोलीसै ताब फंगबिगनी पौमाई की थौरमदा दापुनी कांगबुन सक पौमाई लाइसोलीसै थमजरी नुथिल पुंग मरी मिनट निफु पुंग मंगा कबू की थौरमद संदोक जगनी लाइसोलीसै अरोबद फंगबिगनी मालेम की टूरीजम निमित का मरी लेना वारी बताई माओ की थौरमदा अथिरो कांगबुन सक माओ लाइसोलीसै फंगबिगनी नुथिल पुंग मंगा मिनट कुन पुंग मंगा मिनट निफु ए एस कहावन कांगबुन सक तांखु लाइसोलीसै अरोबद थमजरी लाइमियोन सिमरी कांगबुदगी तांखु लाइसोलीसै ngasinumidang pung taru mini tara manga manipuri film isai sing taba fangbigani kungangi thorum sandok jagani numidang pung taru mini nifu anba da tan jagani yaikhom thagoi devi na sapa khongjom parba aroi bida thamjari saktam thengman ringai mari suba tangkak ai ba doctor ke ai samangau khonjel da laisram nilachandra madi khwara pa minaksi thorum putopi nongthom ba broma numidang pung tarit mini nifu manga sandok jagani tha asigi sei tha asigi sei sakpi sije gurumayum susitra devi serengba bimol fibau putok pai cruzam devendra मणिपुरी फिल्म इसेंग संदोक जगनी पुंग तरह मिनट यांखई नाहरोल की खोजेल संदोक जगनी पुंग निपाल मखाई थौरम से तहन जगनी पुवारी का सागो नरकलबाइटें पोलम अनौब मिरोल की आई एन ए वार म्यूजियम कम लाइब्रेरी की क्यूरेटर डॉक्टर लाइसरम साधना देवी की उन्दन वारी बताई सानब की थौरम उन्नबीगदी लोरेंदा निदांग पुंग मापल मिनट तरह मंगा मणिमला की चिठी पाखुम ताब फंगबिगनी दिल्ली देगी रिलेद रेडियो स्कोप नेशनल साइंस मैगजीन संदोक जगनी नुमिदांग पुंग मापल मखाई पुंग तरह यूट्यूब लाइव सेटर ताबी खनबीरक मणिपुरी फिल्म इसेंग संदोक जगनी मतांग कंगना चैनल नोम की थमजरीब थौरम सिंह निंसिंजब लोजरी।

0: आकाशवाणी इम्फाल नईथौ खोंजम सुनी पा पाजरी अहंध मरुब पा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला टूरीजम साकोट हन हद अकोब की फिवम हेरीटेज कहन होने राज्य की सेंटो लेहब चाउना टूरीजम साकोट हई पुनः हब चंगी है मुख्यमंत्री युनाम खेमचान सिंह सेवा संकल्प अभियान की सरुक राज्य की तोान तोान मफम क्या पाथोले मालेम की ना तादबी पालन थौरप मणिपुर पाथोखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है आगामी मचुब चिंजा फंगनबीदाई क्या पाखली राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने है प्राइम मिनिस्टर्स मेगा कैरियर फेयर स्किल इंडिया मिशन गुम सरकार की थौरान नहासी थबक थीब मोय की महुत अतई मोयक मोयनी नहासी चौथोचनीब मणिपुर की एम्बेसडर ओहबी विष्णुपुर जिला की मोयरंग संगा एथनिक पार्क पाथोप मालेम की टूरीजम नुमित की पालन थौरम वांगद राज्यपाल है टूरीजम साखोनब होनब अकोब की फिवम हेरीटेज कहेंदनब होने
1: As we celebrate this day, World Tourism Day, let our vision be to build a tourism sector that is sustainable, inclusive, innovative, and technology-enabled, while remaining deeply rooted in Manipur's unique identity. Let's use the digital agenda to showcase the jewel of India to the world. On this World Tourism Day, I extend my warm greetings to the people of Manipur, our tourism stakeholders, young innovators, artists, communities and all those participating in today's celebration I wish you all continued success
0: Tharmadu da wangang bada mukhyamantri Yumnam Khemchan Singh nai tourism sakhon ge hairabadi lamdamase shanti emadi tangdu leita ba phibam lehen batangai fade hiramasida kanglup khuding mangna punna hona minabasu mukhyamantri na apil tawki mangna hai lamkoi ba miyoi singi pungning chingchin bada lamkoi pham khakna tana madu gi akoi bada leiba miyam gi miyok miyan cha phajaba adu su yamnuk tangai fade थरमद वांगांग मुख्यमंत्री युनाम केमचान सिंह ने है राज्य की सेंटो लेहब चाउना टूरीजम साखोनब पुनः हमनब चंगीदम शांति तंगदू लेता फिवम पुरप तंगाई फदे मुख्यमंत्री ने है
2: खाई कोई स्टेट लो एंड ऑर्डर है रिलेटेड पीसफुल एटमोसफियर टूरीस्ट कई लादे मणिपुर खुदाई कम्युनिटी खुदमा कोई पुनः खादी पीख्रब स्टेट की रिवेन्यू सेक्टर है तरगरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर देन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट टूरीजम से अचौब स्टेट की रिवेन्यू लाब स्टेट की फाइनेंशियल टर्न ओवर चागोदब सेक्टर से थोब कन्फ्लिक है क्राइसिस है मरमद पूरा चैथें पीहल
0: राज्य की टूरीजम विभाग ने सिंधु पाथोली थौर उप मुख्यमंत्री लोसीदिको गृहमंत्री गोविंददास कौथौजम टूरीजम मंत्री खुराइजम लोकेन सिंह यावना एमएलए सिंह राज्य की चीफ सेक्रेटरी डीजीपी सिंह सरुक याखे नुमिदासी मरी लेना बाइक रैली अयुक इम्फाल की हफ्ता कांजेबों की टूरीजम मंत्री खुराइजम लोकेन लमथाखे शांति साखोप है पाथोब बाइक रैली मपूब थौर पाथोप मोयरंग खुनौ की संगा एथनिक पार्क फाउ चे रैली सरुक याद मुख्यमंत्री ने मेमेंटो चिंब पीटू इकई खुमब उत्खे टीवी मोक भारत अभियान की सरुक आकाशवाणी इम्फाल हयें हेल्थ केम पाथोदी है केम आकाशवाणी इम्फाल की ऑफिशियल स्टाफ सिंह टेक्निकल टीम मफम से थबक मई पुन हेल्थ चेकअप तब यागने थौरमी टीवी लेना नाथोहनबी लाइंग पथाप सिंह अकुप वरोल अखंग हईसी पीगने केम ब्लड प्रेसर डायबिटीज अतई लेना चेक तब की कुदचाब लेगने है हेल्थ केम हये अयु पुंग तरगने मेट डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर ने है राज्य की जिला तमेंलोंग सेनापति उख्रुल अखा अराव लोनना नों चुरब याय हयें सेनापति उख्रुल कामजों टेनोपल चांदेल चुराचानपुर फेजोल जिला नों चुरब याय है पाव की मरक थत्ता अटेंब ब्रेक
3: ಲೆಂಗ್ಸಿನ್ಬಿರವು ಲೆಂಗ್ಸಿನ್ಬಿರವು
4: ಅದೊಮ್ ಅನೋಕ್ತಾಂಗ್ನ ಲೇಗನಿ ಹೈಬಗೆ ಅವಾಬ ಲೈರರೋಯ್
3: ಹೊಗ್ದೋಕ್ಚರೆ ಸರ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಚಿ ರೋಡ್ ಇಂಫಾಲ್ನ ಮಣಿಪುರದ ಅಹಾನ್ಬೋ ಐನ ಲೆನ್ಸ್ ಖತ್ತಮಗ್ ಲೈಗದಬ ಸ್ಕೀಮ್
4: ಸ್ಕೀಮ್ ಅಸಿ ಲೌವಿನಿಂಗ್ಬಸಿಂಗ್ನ ಇಸಾಗಿ ಮಿತ್ ಕಸಾನಬ ಫೈಬರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಲೈಬಿಗದಬನಿ ಅದುಗ ಫ್ರೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೀದ ಆಫರ್ ಫೀಜಗನಿ ಕುದೊಂಗ್ ಚಾಬಾಸಿ ಲೌವಿಯು
3: ಸರ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಪೋಜಿಟ್ ಜಾನ್ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟಿ ರೋಡ್ ಇಂಫಾಲ್.
5: Across X, wahiki warning eye oidri. Hokiba sehi English singani kuni toidagi. Manipur gelo pamda sehi mari chup. Across X, wahiki warning eye oidri. Hokiba sehi English singani kuni toidagi. Manipur gelo pamda sehi mari chup na season aduna lakuda. My park tuna laklaba. Across X season abiu. Pohun krava. Amadilin krava matung. Numit humpumangani dagi. Hundrani sukrava. Wahik sukta tadriba. Amadita krava lo pamda. Hidak asikap tok piu. Hidak asina. Mioiba the kanapa piba. Nga. Tintrok. Taro in a singba. Sihande. Across X. Fungfum. AR Agro Kaisampat Amadi Adong Naknaba Tilhat Hidak Yonfam Singh
6: Ningol Kudol Face Lising Ani Kuntaro Lagribo October Gitang Amadagi Ningol Chakobunumit November Gitang Taramatoi Fauba Yum Amada Chang the Bayadra Bapolam Harao Kumai Luhong Kundong Manaching Batabak Taram Kayada Chang the Bayadra Bapolam Kudimak Pena Storda Suna Fanganjeri Ban Blocketi Kudong Chadabana Port Pangdaba Mamalhena Tangba Amatala Henjeroi Port Kudimaki Heavy Discount Lunana Akanaba Exciting Gift Mayamamasu Pena Storna Languna Tamjeri Kaubiraganu October Gitang Amadagi November gitang taramatoy fauba Pena Store Salam Amadi Sagolban Brands
0: Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini Rajya siga asigi puwari ga sagonar ba mapham sing lu nana thamnaba gi nimitarani gi oibalam tu sendok ba gi thorom amanga sidagi haukre Manipur State Archaeology na Rajya gi Art and Culture bibagim ideng makad ngasi Imphal gi kangla da hudokre Seba Sankalp Abhiyan ki sarukam oina pangthokadaba thorum hokdok laduna Rajya ki Art and Culture ki Secretary Sri Naurem Prabin na hai Rajya sta chairau bo yauna tongan tongan bharau kumai gi matamda yum amasung akoi bagi mapham sing luna na thambagi chanabi lei sanabi asi tung koina chana na bana sing da thokdang logodaba ni ngasi ki thorum du saruk yakib Imphal Municipal Corporation ki Municipal Commissioner Sri M Nando Singh na hai kangla asi kendra sarkar ki clean Himalayan Hill Cities Initiative ki makada khangat ba mapham singi manung da yauri IMC na kangla asi pollution laitaba lunan ba mapham ma oihna ba gi pandam da phata haudi hundok pham yauna sanitation gi oiba infrastructure sing semga sagal lagani Lebak sin bathung na chathari ba seba sankalp abhiyan gi sarukama oina Tengnopal CMO miyang makada jila asti lairiba Anganwari center sing yeng chinkre thoromadi gi sarukama oina CMO Tengnopal na Anganwari amasung asa worker sing da unaduna warishana ki doctor nurse asa worker amasung Facilitators in the Kunbi, Sita, Aimol, Tampak, Saibom, Kulsaibungi, Ayusman, Arugya, Mandir, Singh, Dazatuna, Diabetes, BP, Masung, Tungan, Tungan, but Tasting, Pangtoki, Amadi, Lim Nala, Hitalang Taksu, Into K, Kaksing Jila, the Suhaying, the Gi, DC Office Complex, the Seba, said to Abian, Game, Pangtokani, Maliam Guin and Nata, the Basingi, Numiki, Palan, Taurum, Sukmasi, Pangtokre, National Program for Prevention and Control of Deafness, NPPCD National Health Mission Amasung Rajagi Health Services Director and Puna Sinduna Imphal gi Lampel Patalaiba Directorate Asi Dangasi Numit Asigi Palantarum Pangtoki Palantarum Asigi Hiramna Nata Dabasingi Hak Khangan Bhai Basini Thoromadu da Wangangmada Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of Person with Disabilities ki Director N Khoibi Singh Nahai Ekoi Ayambana Nata Dabamui Singh Khak Natana Akhanabamui Singhi Hak Thawui Dabagum Tauri Angang Singh book class 8 na traga 10 pauba suksoi shoidana mahi tamhanbagi hak laijarabasu asigumba angang singi mama ma payam banadi masa singu mahima sing tamnabagi damak tha de sri khoibi na makata na hai rajyagi social welfare bibhag na lonfan hai na mingthon ba application amasu same duna pau phau khogjun taunaba mateng ohelagani soyol machuna chutok pangthokadaba thorongi saruk ama oina kaksing sangai yumphamda screening kem ama nomugiwa doctor singi sign language workshop amasu pangthokani Sports Authority of India Saita Gyal Marputaruk Suba Battalion CRPF Amasung for Better Kanglai Pangna Puna Sinduna Ima Kaitial Gi Akoiba Mapham Singh Da Sengdokpagi Thabak Pangtokare Thormadu Laibak Sinba Tungna Chathariba Swasthahi Seba Campaign Gi Sarugam Oina Pangtoki Bani Thormadu Da CRPF Ki Commandant Sri Saurabh Kumar Chaudhuri Saita Gyal Gi Official Singh for Better Kanglai Pangki Volunteer Singh Saruk Yakki ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣ.ꯁꯤ. ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁ.ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯏ.ꯕꯤ. ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯒꯦꯔꯤꯁꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯆꯩ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯇꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯕꯣ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯨꯃꯥꯡꯂꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯏ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯅꯥ 15 ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯔꯤꯖꯥꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥ, ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯀꯣꯔꯁ, ꯗ꯭ꯔꯣꯅꯥꯆꯥꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯁꯤꯡꯗ, ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥ, ꯑꯦꯁ.ꯀꯦ.ꯇꯤ.ꯚꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯔꯥꯖ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝꯗ, ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯅ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯅꯥꯎꯇꯅꯨꯁꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯅ ꯈꯥꯡꯉꯤꯃꯝ ꯁꯃꯨꯉꯧꯗ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ꯫
7: ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯒꯣꯜ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯦ, ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯅꯨ꯫ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯒꯣꯜ ꯀꯥꯞꯄꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15 ꯉꯟꯈꯠꯅ ꯂꯧ ꯂꯣꯍꯜꯂꯤ, ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯑꯃꯣꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯠꯂꯜꯂꯤ, ꯐꯧ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯤ, ꯐꯧꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯒꯣꯜ ꯀꯥꯞꯍꯧꯗꯕꯅ ꯃꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅꯤ, ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ꯫ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯀꯥꯞꯆꯔꯦ, ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯤ꯫ ꯐꯪꯐꯝ: ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ, ꯃꯩꯅꯣꯜ, ꯂꯩꯔꯛ꯫
8: ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯇꯦꯁꯠ 2026 ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯦꯄꯔ 1ꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:30, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯄꯔ 2ꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 4 ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
0: ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯊꯝꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯥꯂꯥꯀꯣꯠꯀꯤ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯇꯒꯤꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯆꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒ ꯁꯝꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯡꯕꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯕꯤꯔꯣꯁꯇꯒꯤ꯫
9: ꯃꯩꯔꯥ ꯕꯥꯁꯤꯀꯣꯡꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯗꯤ.ꯖꯤ. ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯍꯣꯀꯤ ꯀꯞ 2026ꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯍꯣꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦ. ꯊꯧꯕꯥꯜꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 2 ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯁ. ꯑꯗꯤꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ. ꯁꯔꯤꯇꯥꯅ ꯆꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦ. ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯁꯉꯥꯏ ꯏꯃꯦꯕꯜꯅ ꯆꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯣꯀꯤ ꯀꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯡ 2:10 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ. ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯗꯕꯜ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ. ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯃꯥꯏꯊꯥꯏ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2026ꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 450 ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ 19, ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ 8 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡꯒꯤ 5 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯗꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ. ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯨꯂꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗꯦꯕꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯐ.ꯑꯦ. ꯏꯔꯦꯡꯕꯅ ꯌꯨ.ꯁꯤ.ꯁꯤ. ꯀꯛꯆꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 7-0 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ.ꯁꯤ. ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯅ ꯋꯥꯏ.ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ.ꯌꯨ. ꯀꯛꯆꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 2-0 ꯊꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯁꯤ.ꯋꯥꯏ.ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ. ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯃꯊꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯁꯨꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯋꯥꯏ.ꯑꯦ.ꯁꯤ.ꯅ ꯌꯥꯋꯥꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 2-0 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯄꯂꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯔꯤꯁ ꯑꯦ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯐ.ꯑꯦꯜ. ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯂꯦꯜ 10 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯔꯟ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 240 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯣꯀꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 7-0 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 30ꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ
0: ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯥꯍꯦꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯆꯨ ꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
10: ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯁꯤꯖꯒꯨꯔꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯆꯤꯇ꯭ꯔ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯐꯤꯕꯧ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ। ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯥꯕꯨꯝ ꯁꯤꯃ

ताबिक्री थासिगी इसे लांगबन थागी थाबुम सिमा निंगसिंग थानी लायोइख्रबा थवाई सिंगी असी असंग लंगदाई अनिदा पुकमेन पाउमेनब थानी लांगबन था मिरमलेन लायरमलेन ताइबं कुमहै याउब फंगद्रुंगे पुनसी सिंथासु याउजब नंगदे मुंदुन पुबिखिब थवाई कयागी तेंथा खोल कयासु थेमजिनब थानी लांगबन था थासिगी सेसकपी सिजा गुरुमयुम सुचित्रा देवी सैरेंगबा बिमोल फिभो थौरम पुथोपा हाइग्रुजम देवेंद्रनी थौरम संदोक्तुना ताहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की नुमिदांगी थौरम परेंगनी।

0: ओबी रसी मनी मलादे की चिठी पाखू।
1: चिठी थाबी रगली बामदी थोड़म थाबी रीब सिंबू मनी नाहन बद खुरम जरी
2: मला नशु खुरम जरी
1: हौसी मला
2: ngasi gi ahan boine lokho cheri basi tsc hairok part 2 thoksom laikai degi thokchom damaina thabirak pani
1: hairok part 2 thoksom laikai degi thokchom damai bu taramna okcheri kari kari wapham sing thambirak pa tarasimala
2: ahan bada mani mala gi thoram lanthopiri ba tamo iche mabu ikai khumna jeri
1: adom busu mani mala na ikai khumna bu cheri
2: thoram sing nungaina tajeri थौरम सिंह अदुदी सेप्टेम्बर तांग कुनी थोय अयुकी पुंग तरेट मिनी निफु संगाई चैनल द संदोपी खिबा मालेम गी होंगलकलीबा मचत द सेनमित लोन अरोइबे सरुक अदुगा तांग कुनमा थोय अयुकी पुंग तरेट याइफे युम्बाल गी थौरम द अल्जाइमर लैना खंगदोक्सी हारिबा थौरम सिंह असी यामना नुंगाई नेता जखी अदुगा अरोइबा द रेडियो सीरियल प्ले जहेरा ताजनिंगी
1: हौखीब सेप्टेम्बर की तंग कुनीथोय अयु पुंग तरेट मिनी निफु अतोप मंगल थौरम डॉक्टर थोहेन हैसनाम सीनियर डायरेक्टर हेड ऑफ ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्लानिंग एंड कंट्रोवर्सी वाशिंगटन डीसी यूएसए लेबगा उनदुनो वारी वताई साबिखीबमदि थौरम पुथोकपा रायचंद चिंगथाम अदुगा सेप्टेम्बर तंग कुनमा थोय कंगला चैनल अयु पुंग तरेट खोंजेल नाचोम ताहनजेखीबा याइफे युम्बाल थौरम अल्जाइमर लेना खंगदोक्सी हिरमसिदा डॉक्टर लाइश्रम सिंखई लैमा एमडी साइकियाट्री डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इम्फाल वेस्ट का लोयटोंगबम रंजनागा उनदुना वारी वताई साखीबा थौरम पुथोकपा थोक्सोम रेनोबला हौखीबा चयोल द छंदोकचखीबा थौरम अनी एसी बुसु थोयदोंना नुंगाइना ताबिखी हाइना पौदमबिरकपा अमदि आकाशवाणी इम्फाल गी थौरम सिंगबु चांग नाइना नुंगाइना ताबिरी खंगन बिरकपा सिगिदमकता इनाउ थोक्सोम दामैबु ngamkhai leitana thagatpa phongdokcheri leptana tabiyu nungaina tabiyu adomna taningi ningsing birakliba radio serial play jehra lilasi akashvani imphal gi khutta tekta kaidina leijeri inaw gi ningba thungna na bohona jage tobutabu mega serial haibadi episode yamba serial oibanina matang matam munna khallaga schedule tawdaba yadaba haiba amasu lai kari haigi mala
2: achumbani
1: matam khradangdi inaw na ngai biro soidana maki inaw na taningli lilasi lanthoktuna tahan jage
2: मथंगी सिटी एसी ननाउ या स्कूल दगी न थाबी रख पसी थी ने
1: ननाउ या स्कूल दगी न करी करी वाफम थंबी रख पमाला
2: इचे म अमसुंग तामो द वाफम अनीदं पुखचे गे हन इपिरे
1: तक पियु करी करम ब वाफम ओइर बनो
2: संगाई चैनल गी नुमिदांग पुंग मापल गी पाव पा ब होबदा अमसुंग लोई बदा मरोई ब पाव पहन बियो करी गुंबा अता बाई खोइना नंगहौद दुना पाव गी मयाई द रेडियो ऑन तौरबदी करी मरु ऐब पाखिबनो हाइबदु खंगदरे
1: मियाम गिनिंग ब थुंगहनब मियाम न पेनबिनब संगाई चैनल गि नुमिदांग गि पुंग मापल द मिनिट मंगा गि पाव अदुगा नुंगथिल गि पुंग अहुम द सु मिनिट मंगा गि पाव असि अनौब थौरम गि पुंगफम द हाबजरे मसि मतम खर गि ममांग द दि हाइरिब पुंगफम मसि द पाव थमजरम द बने मतांग सि द ननाउ द हाइजेनिंग बसि तेन खरब मिनिट मंगा गि मतम मसि द अहौब अमसुंग अरोइब द मरोइब पाव हाइन हनजिन न पाबबुदि पाव खर यामन चननब न्यू सेक्शन ना तरे तरा थोंग खनरगा लांगजब पाव गि मथेलनी हाइजब तारे मरोइब पाव खक्त गि पुंगफम सु लै अदुगा अयुक पुंग तरेत मखाइ नुमिदांग पुंग तरेत मखाइ अमदि नुमिदुंग ब पुंग तरा नि थोइद पारिब मतम खर सांगन खाक्तुन थमलिब पाव गि पुंगफम सिंग असिददि अदोम न हाइबिरिब मरोइब पाव हौरकप अमसुंग लोइरकपद अदुमक पाथोक्सबनि अदोंगि वाफम असिबुसु सजेशन अम ओइना हरावन लोक्सिनजेरी
2: संगाइ चैनल गि नुमिदांग पुंग तरा मखाइ थौरम लोइबदा अनाउंसर ना इम्फाल स्टेशन गि प्रोग्राम दि लोइरे अदुबु दिल्ली दगि रिले तौदुना प्रोग्राम दि कंटिन्यू तौगनी हाइन हाइहन बियु मसि हाइद्रबदि प्रोग्राम अदु अन ऑफिशियल ओइब मि अमना पंगथा द थाजनब माली
1: मानब हाइबसि असिंगब मक्ति नत्रबनि ननाउ चिंगनबिगनु पुंगनिं फाथबियु आकाशवाणी इम्फाल की थौरम दी नुमिदांग पुंग तरा मखाइद लोइरबनी ना अनाउंसर ना क्लोजिंग अनाउंसमेंट पीदुना क्लोज डाउन तौजरबनी अदुना दिल्ली दगी रिले लौदुना मखा ताब थौरम अमुक ताहन जखिगनी हाइरुब यादब अमसु लैबा करी हाइगे मला
2: अचुंब मगनी
1: थौरम दी पुंग तरा मखाइद लोइरे तरा मखाइगी मतुंग द तारिब थौरम अदु अदोम न तुमलम दाइद थालिब मैगी चांग अदु खरा पिकतकना लैथरम बुगुंबनी नत्र मला
2: अचुंब मगनी
1: वाफम मसिमक लैदुना सु या स्कूल दगी ननाउना थंबिरकली बवाफम मसि तराम न लोक्षिन जरी हराउन लोक्षिन जरी
2: एन जी रणबीर पोरमपा चुथेक तगी थाबिरक पसिथिए सी अमुक लोखचरी
1: अइखोइ द ततन चिथि बिरकपा पोरमपा चुथेक तगी एन जी रणबीर नंगसि